एसएस आदि खुला खबर को साथ में हिमाल सुनचांदी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक गरगहनाहरू ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनचांदी पसल वालिंग बजार सेंजा।

0: सुमित ने
1: आइए हम लोग आने माँ
0: 10 बजे अच्छा
2: इस समय को साथ माँ जितू सुनचादी पसल
3: भूसाल पेट्रोल पंप संगे चोड़िए को डिपार्टमेंट स्टोर्स को 5 घर अगाड़ी जैसी 15 तर्फ जाने बाटो में कुना को लाइन में
2: विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: रेडियो आदि खोला 105.4 आपने ख्याल रखना।

0: समय को साथ में जितू सुनचादी पसल
1: भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़ी डिपार्टमेंट स्टोर को पांच घर अगाड़ी जैसी पंद्रह तर्फ जाने बाटो में कुना को लाइन में
0: विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
2: रेडियो आदि खोला 105.4 विस्तृत जानकारी का लागि फोन नंबर

0: बस ना, आइए हम लोग अनिमा एक बजे तक छा
1: इस समय को साथ में जितु सुनचादी पसल भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़िएको डिपार्टमेंट स्टोर्स को पांच घर अगाड़ी जैसी पंद्रह तर्फ जाने बाटो में उनाको लाइन में विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने ठाउँ
0: सुन्दर हुन्छ रेडियो आदि खोला 105.4 आफ्नो ख्याल राख्नुस् है।

0: वालिङ नगरपालिका छ मिर्दी तल्लो चोक पुलको नजिकै।
1: फोन नम्बर 0364 41 0 87, मोबाइल 98 4 69 70 0 41 47।

विशेष आधी खुला खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक गरगहना ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सेंजा।

0: सुमित हम लोग दस बजे छा
1: ए समय को साथ में जितु सुनचादी पसल
2: भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़िएको डिपार्टमेंट स्टोर्स को पांच घर अगाड़ी जैसी पंद्रह तर्फ जाने बाटो में कुना को लाइन में
1: विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
0: रेडियो आदि खोला 105.4
3: नमस्ते महोत्सवका आफ्नै गायक तिलक बम्मल्ल तपाई यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ साङ्गर जिल्लाको पहिलो आवाज आदि खोलाको स्पन्दन सामुदायिक रेडियो आदि खोला 105.4।